पौड़ी आपे ही करना क्योंकि आपे ही ते तारी है। देखे किता अपना दरक चिपकी सारी है, जो आया सो चल सी सब।

सचिया बाद चा कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ना तुम डोलहो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी कन हर बूंद बसौ रोमावल कुसम बसंत गनंत न आवै रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जान

त्वा प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूपा पार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूव्रत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक सोग विदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण।

ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है। भूत बन चारी छित छौना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बडैया दे दब गुलाब डाल वृक ध्यानी ठानियत है। जिते बड़े ज्ञानी ते नो जानी पब खानी नाहे ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूजरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह पखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया ते तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन जारी दिखी के सना।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियोई करत है। चंद्रमात शीतल न सूरत से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्ण कित वेद और पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए पितय है। मोन दी मदार कित अश्विन कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीर और पिगंबर कित गाने ना परत ये भूमि हित हो के फिर भूमि ही मिलय है। जो की जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तोप जी कपट भेष पूस दी अनेक दानी वावत है। शीश को काह भय मल जप काढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस टांग अथ दीस को काह भय रुकी जप डर रहे उर्द मुख मान ते न मुंड ने हो रायु आदीस को कामना दीन सदा दामना प्रवीन एक भावना बीन कैसे पावे जगदीस को शेष पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सुख सौ आग को चरिया फल फूल को बछैया सदा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न भूख सौ कहा भयो भेंट जो घसत शेष वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जो सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करियोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठौर पास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बन का बहु संन्यास भेष बन कह दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडदारी होई के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल कुंचर गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जड गंग धार डार डार फांसी ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के गिये जो पे पायत जाप देव पूतना सदीव तुही।

ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसे सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरत हिंदू न्यार न्यार देशन के भेष को प्रभाव है।

आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनू का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केत कछ मछ केत उनको करत भच केत अच वच हो सब।

तेज लीन ताई तयो भज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंगबाजी केत मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत।

विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चो हजार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपन

मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न भित्रे सभूते भविखे भवाने चित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयं निर्विकारं।

हंगाहू देह दुख हंगाहू औख दी रोग के शोक सोख हंगाहू देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार्य।

देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राज

नाग बाने कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं शैल छाला धरे छत्रधारी कहूं।

अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योतबान, जय जात पात नहीं सत्र मित्र, जय नेह गेह नहीं जेहन चित्र, जय रंग।

यगन होत्र गई पवन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र बच नहीं तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधरा बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जके याद करम कहूं अगन होत्र कहूं।

परमत्सो भरम गई अग्नहोत्र गई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम गई सिमृत शास्त्र उजरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृत चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तद्दपतास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तद्दप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं भरत पान बव करत हो।

दीन जमीन जमा जे रचयं सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात वितं जे रचयं छत्री छत्र छितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैक न दाग न दोख गणं जेहे अंड ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नवखंड सचियो रच तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नकंस जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिकंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किए देव देव सराध पितंग नखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जाच जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिग पाद गणंग भव भूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काद पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवासितं रज रोज एकादश चंद्र वृतं दुत चंद्र

गण किन्नर जच भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अनवंज प्रभान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप।

भूत भूत है सदा गंज गंज मानी है। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है। समस सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है। सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है। अछिज तेज मानी है। सदीव सिद्ध शुद्धता प्रता

पाद चहन भरण है, देख से गेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्ववरण है, जिमी जमान के विगह सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर मैं विशेख न मानिए, न जंत्र मैं न तंत्र मैं न मंत्र बस आवई, पुराण य कुरान नित नित कह बतावई, न करम मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइए, अगंज अद देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानिए, न दे है न गे है न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बडे तपस्तपि विषे किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आद देव की अनाद बात मानिए नजात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदीव सर्वलोक के

सर्वठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानव न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनंके बिके विराजे शूद्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले थले महे जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र ओमकार कोटेंद्र उपेंद्र।

घुंगुरु कमंकण सहस्र जमंकण पण्यर फुंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहा संश्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय ओसी मघासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष निकंदन भ्रष्ट बनासन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदारण तेज प्रकर खण धुंध तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकर खण।

धूम राज विदंसन सुन चुनसन सुम्बन पादन सुम्भ मथे जय जय हो सी महाकासुर मर्दनाद नील गाद कथे।

दाता दुरंत दुख दोख रहत जय नेत नेत सब भेद कहत। कयोच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे। कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूर सिवंत कई पलट सूर सिजदा कर।

नानका अमल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाए जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेग कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चयन नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्तपाल। ऊर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंतन दुरंत जे नेत नेत निषिधन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निषिधन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पछ पशु नग नाक नराधिप सर्व समय सबको प्रतपार है। फोखत है जल मैथल मैपल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके बत मापत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोग रोहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंगेव न भेव रखियो भ्रम स्यो भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना।

कामना क्रोधन लोभ न मोहन रोग न शोक न भोग न भय देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त गेह छह जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरी सुत सुंदर श्री पद्मा पतले है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गाव तऊ तन एक न लागन पावे राखत है अपनो करत है कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जाच भुजंग सोदान देवा भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूमा का अवतार रसातल जाच भुजंग सब है सरन्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाओं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो वेद गतेव न वेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन में जय को मितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पज हारे वेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोक न संग तिहारे याद अनाथ अगाध बेगत वैग जप्यो तिन ही गुलतारे तीरत कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तपोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे विनांत को अंत के धाम से धारे त्वा प्रसाद कवित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारु के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूं के मान है ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय द्यावे गोर गर देजी गुण गावे तेरे नाम है जो कि जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे यार बक्के यार भी अराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने गंधारी गोरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वह तिलंग बह जाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीर्ष ने आवे तिब्बती दे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप

के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है या नासी के मानी है जंत्र हूँ जात जा की बा बहु नमाय ताकि पूर्ण प्रभा के सुचटा के अनुमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को यंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार वार हूं को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलबिधावे पूर्वी न पार पावे सत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के मुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नीर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिंह रूम ही राशि हुसैन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सोरंगाबाद नी के रही झूल के जम्पासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीर्त तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कलाद कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जून जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीर्त ते हर के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोरे गखरी गर्दे जचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूपो कमाऊ सर्वठौर मैं बिराजे जहां जहां जाइयत है।

माता तत महत दिवस रात दोई दाया खेले सगल जगत चंगे आया बुरी आया वाच तर महादो करमी आप।

सुरहाव हर जन के वट भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपता सहमल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए

बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद बिचारे दे

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत। स्वर्ग बास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै। बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छय सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन। ताऊ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री

पौड़ी साहब दयाल कृपा करता स्वीकार करसी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नहसी हुक्म न हो प्रमाण तक में कामल पासी कसमें पावे सो करे मनो।